0: जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణలో భాగంగా సందేహాలు మరియు ఇతర వివరాల కొరకు మీ బీఎల్ఓతో కాల్ బుక్ చేసుకోవడానికి ఈసీఐ నెట్ యాప్ను ప్లేస్టోర్ లేదా voters.eci.gov.in ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు కాల్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత మీ బీఎల్ఓ 48 గంటల లోపల మళ్లీ మీకు కాల్ చేసి మీ సందేహాలు నివృత్తి చేయగలరు. శ్రీ వివేక్ యాదవ్, ఐఏఎస్, ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, ఆంధ్రప్రదేశ్.
4: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो.
5: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ. एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी. पेमेंट लिंक भी भेजा है.
4: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है. धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं.
5: सच?
4: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो. सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें.
5: समझ गया.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी

0: कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods, and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. In social media posts, the President said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the Vice President prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said his thoughts are with the

क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कोमलाया है। जब अंदर कुछ टूट जाता है तो इंसान कहां किसी को कुछ बता पाता है, कहां कुछ कह पाता है। ये लफ्ज आखिर कहां खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। किस्सा इश्क उसे हमने सुनाया ही नहीं, किस्सा इश्क उसे हमने सुनाया ही नहीं, क्या कहें अपनी तबीयत को ये भाया ही नहीं। बेशक इंसान चाहता है बहुत कुछ, कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, और कई बार किसी से कुछ सुनना भी चाहता है लेकिन सुन ही नहीं पाता। और कई बार यूं भी होता है कि खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। दो लोगों के बीच जो खामोशी होती है, कई बार वो खामोशी कहां होती है, वो तो दिल के जज्बात का आईना हुआ करती है। लेकिन जब किसी का दिया हुआ दर्द उसे हम मोहब्बत कह ले, तो समझ लीजिए कि मोहब्बत उस मकाम पर पहुंच गई है जहां कोई वापस आ ही नहीं सकता। ये वो मकाम होता है जिसके दूसरी जानिब कोई रास्ता होता ही नहीं है, और इसी को कहते हैं कि जब उसने दर्द दिया है तो उसका दर्द भी कबूल है।

बेशक जनाब ये दर्द अगर उसने दिया है तो फिर ये भी कबूल है और ये भी मोहब्बत है। जिन्हों से गुजरने को जी चाहता है, हंसी जब्त करने को जी चाहता है, जुनून से गुजरने को जी चाहता है, हंसी जब्त करने को जी चाहता है, जहां इश्क में डूब कर रह गए हैं वहीं फिर उभरने को जी चाहता है। लेकिन जनाब इस जी का क्या है, ये तो बहुत कुछ चाहता है। अक्सर व बेशतर एहसास होता है कि ये मोहब्बत है भी या नहीं, क्या उसकी आदत होना मोहब्बत कहलाई जाती है। वो ना हो तो उसके ना होने का दुख होता है, वो हो तो शायद एहसास नहीं होता। अजब कहानी है इस दिल के जनाब, और ये कह सकते हैं कि अक्सर उसी का इंतजार रहता है जो सामने भी हो, जो साथ भी हो। ये नजर उसी को देखती है, उसी को चाहती है, उसी का इंतजार करती है।

देखा आपने, इंतजार की लज्जत है ये कि इंसान इंतजार करता ही चला जाता है। ये आंखें इंतजार की आदि हो जाती हैं। और जब बात आई है इंतजार की, तो जनाब हम समझ रहे हैं कि आप भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी पैगामात हम प्रोग्राम में शामिल करें। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैसेज आया है जोया का, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। लिखती हैं सुकून वाले सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू जोया, आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए, अच्छा लगता है। और इसके अलावा हमारे साथ हैं अनुभव, लिखते हैं आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं भी आपको सुन रहा हूं। थैंक यू अनुभव, आप बिहार से हैं। और इसी तरह से आप हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम सुनते हैं तो यकीन मानिए हमें बहुत अच्छा लगता है। आदाब, इस रात की तन्हाई में आपको सुन रहे हैं, आपकी शायरी और गजलें पसंद आ रहा है। ये कस्बा गुनवार यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और इतनी सी थी उनसे आखिरी मुलाकात की कहानी, सुबह खामोश, आंखें चार और उनमें दो दो बूंद पानी। जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिला तो ले लिया हमने, खबर नहीं थी सबक से पहले इम्तिहान होंगे। देव लिखते हैं अपने बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ अंदाज में हमेशा की तरह। शुक्रिया देव। और गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो रंगे महफिल। रात की तन्हाई में हवाएं और फिजाएं और इसमें तैरती हुई आपकी आवाज दिलों को सुकून दे रही है। चिट्ठी ना कोई संदेश, ये गजल सुनवा दीजिए। नाइस प्रेजेंटेशन, किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी, आनंद विहार से। मुझे लगता है आपने आज आपकी याद आती रही नहीं सुना, उसमें हमने आज इस गजल को शामिल किया था। और लेकिन कोई बात नहीं, फिर सही आप शायद नहीं सुन पाए होंगे, कोशिश करेंगे फिर किसी प्रोग्राम में इस गजल को जरूर शामिल करें। और 13 तारीख याद थी मुझे, पर लेट ट्यून किया है, फिर भी महफिल में शामिल हो गया। खोलते ही खूबसूरत गजल सुनने को मिली। नमस्कार, केपी तोमर मेरठ से हमारे साथ। वाह क्या बात है, बेहद खूबसूरत गजल आशा जी की आवाज में। जी हाँ केपी तोमर साहब, कोई बात नहीं, आपको याद रहा आज की हमारी मुलाकात, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और किसी को याद करना और किसी की याद रह जाना, ये बड़ी बात है। लेट होना कोई बात नहीं है, गजलें आपको अच्छी लग रही हैं और हमें क्या चाहिए। हम तो खुद यही चाहते हैं कि दिल को सुकून दिया जाए, इस मसरूफ जिंदगी में कुछ पल कुछ लम्हे अपने लिए निकाले जाएं जिसमें सुकून का एहसास हो सको। और प्रदीप सलूजा जी हमारे साथ हैं जनकपुरी नई दिल्ली से, लिखते हैं वाओ कितनी खूबसूरत गजलें आप सुनवा रही हैं और तुसी नेक्स्ट फिर कब आएंगे हमसे मिलने के लिए। प्रदीप जी, हम अक्सर व बेशतर आते हैं, कभी सुबह, कभी दोपहर और कभी शाम, और मुलाकात आपसे तकरीबन इस प्रोग्राम में अक्सर हो जाया करती है। तो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए आएं और ढेर सारी बातें आपके साथ करें, कुछ अपनी कहें, कुछ आपकी सुने, कुछ दिल के बारे में जानें, कुछ मोहब्बत का जिक्र करें, कुछ इश्क की दास्तानें कहें आपसे। चलिए, सुदर्शन मुखी और अनिता मुखी, सिमरन मुखी हैं हमारे साथ शांतिनगर सोनीपत से। लिखते हैं वेरी हैप्पी एंड हेल्दी मंडे, गुड इवनिंग एंड नाइट, वी आर लिस्निंग प्रोग्राम रंगे महफिल, नाइस प्रेजेंटेशन, गुड गजल प्लीज, यू आर बिग थैंक्स फॉर बेस्ट प्रोग्राम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।

की फैमिली, हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि कुछ अच्छा सुनवा सकें, कुछ बेहतर सुनवा सकें, और आप सबको अच्छा लगता है और हमें क्या चाहिए। आपका शो अच्छा लग रहा है, अनुभव एक बार फिर हमारे साथ हैं, शुक्रिया अनुभव। और शो आप ही का है, मेरा शो नहीं है, आप हैं हमारे साथ, तो समझ लीजिए कि ये शो है कामयाब। और नमस्कार मैम, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज से टू से आकाश। ओके आप ओके, तुम्बा हमारे साथ, और तुम्बा हमेशा से आकाश को याद करती हैं, लेकिन तुम्बा आपने कभी हमें ये नहीं बताया कि आपकी आकाश से मुलाकात कभी होती भी है या नहीं, चलिए फिर बताइएगा कभी। और रही बात हमारे साथ, लीजिए जनाब एक और साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश जी हमारे साथ हैं दिल्ली से, लिखते हैं कि बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ और सोच रहा था कि मैसेज करूँ या ना करूँ, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि हम कामयाब हैं आपसे दोस्ती करने में। और कोशिश देखिए एक छोटी सी हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी होती है कि हम सब जानते हैं, हम सब की जिंदगियों में बहुत सारे दुख भी होते हैं, खुशियां भी होती हैं, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे भी होने चाहिए जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच सकें, अपना तज़िया कर सकें और जान सकें कि आखिर हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, हम किसके साथ जिंदगी गुजार सकते हैं या फिर किसके साथ कुछ पल खुशी के गुजार सकते हैं। अपने बारे में जाने कि हमारे अंदर कहाँ कोई गलती हुई है हमसे, कौन सी हमारे अंदर कमी है, तो उसको भी दूर किया जा सके। यानी कुल मिलाकर हम एक ऐसा वक्त ज़रूर गुजारें कि हम अपने लिए जिएं। तो बस हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इस प्रोग्राम में आपके साथ वो बातें कर सकें जो वाकई हमारी अपनी दिल की होती हैं। कई बार दिल बहुत उदास हो जाता है और उसके लिए ये बहुत ही खूबसूरत शाहकार है।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37 की वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी करार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से भारत लाए गए। हॉर्मुज जलमंड रूपंध्यम पर नियंत्रण विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16

0: आकाशवाणी
1: 12:03 हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो। मैं हूं एसएम शरीफ, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।